क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे,

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को

0: जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।

0: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जट्टा आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतर रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़

0: टीए कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई की अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about parties' organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip Father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्यायिक क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ

0: टीवाणी आकाशवाणी।
1: गुड आफ्टरनून है जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप आज? और अगर हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो बहुत सही समय पर आपने ये समय निकाला है। देखिए, घर बार अगर कहीं आप हैं, बाहर नहीं गए और घर पे हैं, खाने की तैयारी हो रही है, तो जाहिर सी बात है पूरे परिवार में लोग कहते हैं कि मेरे वाला व्यंजन, मेरे वाली डिश ये बनाइएगा। बच्चों की पसंद कुछ और है, बड़ों की कुछ और है, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी पसंद कुछ और है। आपकी पसंद क्या है ये जानने का सही मौका है और सही स्टेशन है, क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो गया है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ रंजन। झटपट बताइए अपनी पसंद का गाना और मैं पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि किसी भी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपके लिए परोसने के लिए तैयार हो जाती है। तो फिर मनपसंद थाली के साथ, मनपसंद खाने के साथ, अगर मनपसंद गाना भी आ जाए तो फिर क्या बात है। 9868107070 पर आप हमें कीजिए व्हाट्सएप। फिल्म का नाम लिखिए, गाने के बोल लिखिए, अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए। बाकी सारा काम मैं करूंगा और मेरे साथ मेरे कुछ एलियन दोस्त। I'm just wondering, सोचिए जो हम रेडियो पे बात करते हैं, ये जो हमारे यू नो ट्रांसमिटर्स हैं, ये आप तक तो आराम से पहुंचते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका निभाता है वो है एंटेना। क्या कहीं किसी दूर दुनिया से, दूर किसी अंतरिक्ष में कहीं कोई एलियन भी हमें सुन रहा होगा, तो उसकी पसंद का गाना भी आज बजाएंगे। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो।

जी हाँ, हमारी फ्रीक्वेंसी है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ दिल्ली और आसपास। इसके अलावा ढेरों फ्रीक्वेंसीज पर हम पूरे भारतवर्ष में सुनाई देते हैं, और अगर आप इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो अपने स्मार्टफोन में हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर, और उसके बाद जुड़ जाइए आकाशवाणी के सभी रेडियो स्टेशन से। दूरदर्शन के सारे कार्यक्रम आप देख सकते हैं, तो फिर हमें अपने साथ लेके चलिए, और आपकी पसंद के गाने तो हम बजाते ही रहते हैं, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। और जो गाना हम बजाने जा रहे हैं, जिसकी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, वो हम पहले मैसेज पढ़ दें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो कहीं मैसेज किसी लाइन में कहीं गुम ना हो जाए। नमस्कार, शुभ दोपहर लिख के भेजा है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम बाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। क्यों सर, कहीं गलती तो नहीं हमसे? जरवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, ग्राम जसवाड़ी से। राइट सर, आप सभी के लिए एक नहीं है तो इतनी सारी जब आपने अप्रोच लगा दी, मतलब एक मैसेज में इतना ज्यादा नाम आपने लिखा है, तो मुझे लग रहा है कि भाई इतने सारे लोग एक साथ हमें सुनना चाहते हैं। जो गाना आपने रिक्वेस्ट किया है वो है रिमझिम रिमझिम, फिल्म का नाम 1942 अ लव स्टोरी। मेरा नाम रंजन रंजन, गाना रिमझिम रिमझिम, हमारा प्यारा स्टेशन आकाशवाणी रेनबो। यूं ही जुड़े रहें, रिक्वेस्ट करें, डिमांड करें, हमसे हक से मांगें। 9868107070 9868107070 9868 हमारा नंबर, भेजिए व्हाट्सएप।

तो भाई क्या सोचा आपने? अब आप डिमांड कीजिए, आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप हक से मांगिए, क्योंकि हमारा ये प्यारा सा जो रिश्ता है आकाशवाणी का, ये दो तरफा है। यानी हम अपनी बात कहते हैं और आपकी बात सुनते भी हैं। जैसे अभी हमारे पास एडवोकेट रमन वार्ष्णेय, प्रवल रमन वार्ष्णेय ने अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे पास मैसेज भेजा है। लिखते हैं, मुझे भागम भाग मूवी का सॉन्ग सुनना है। पहले इन्होंने ये लिखा, उसके बाद फिर ये थोड़ा विचार कर रहे थे, तो इन्होंने दो चॉइस लिखी हैं। कह रहे हैं या तो भागम भाग वाला गाना सुना दीजिए या टिप टिप वर्षा। आप देखिए, आपने टाइटल नहीं लिखा तो मैं ये जाहिर सी बात है समझता हूँ कि आप यही गाना सुनना चाहते हैं। भागम भाग फिल्म का टाइटल सॉन्ग आपके लिए आ रहा है, प्रबल रमन वार्ष्णेय जी।

आप सभी सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग। 9868107070 पर व्हाट्सएप करना है, फिल्म का टाइटल लिखिए, नाम लिखिए, गाने के बोल एक आध लाइन लिखिए, अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए हमें। दैट्स सो सिंपल।

जी हाँ, कभी तो शर्माएगी, कभी तो आएगी, कुछ ऐसा ही करती है बारिश हमारे साथ। अब दिल्ली में मानसून की जो छटा है, घटा है, वो बरसने के लिए तैयार है। बारिशों का दौर चालू होने वाला है दिल्ली के अंदर, स्पेशली मैं बात करूंगा, क्योंकि हमें अफेक्ट करती है भाई। मजा आता है बारिश के अंदर, और एक चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो और बहुत सारे तरीके हैं, इस बारे में बात कही गई है, गरम गरम पकौड़े हो और दोस्तों का साथ हो। अब ये जमाना ही बदल गया है, लोग सब ऑनलाइन तो कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए हम आपको मौका देते हैं 9868 10 70 70 पर आपने मैसेज करना है, अपनी पसंद का गाना भेजना। जैसे अब देखिए, प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता भाई वर्मा जी, आप ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से आपने लिखा है। आप ये भी बताइए कौन सा राज्य है, कहाँ से आपने हमें मैसेज किया। बड़ा खूबसूरत आपने गाना पसंद किया है, बेमिसाल फिल्म का, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, ये मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। तो अभी हम सबके लिए हमारे प्यारे से इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग, हम सभी के लिए गाना जा रहा है। बहुत ही प्यारे तरीके से इसे फिल्माया गया है, बहुत ही सुंदर ये गाना है। इसमें एक छोटी सी टेक्निकल इशू है, मैं बताता हूं। जब फिल्म बनी होगी, तो जब वो एक दौर था जब फिल्म थी ये बनी, और इसमें एक ट्रक चल रहा है, अगर आप फिल्म देखेंगे या गाना देखेंगे, वो उल्टा आपको चलता हुआ दिखाई देगा, नोट कीजिएगा।

जी हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता रहा था कि अगर कभी मौका लगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे देख लीजिएगा गाना डाल के। जितनी मेरी याददाश्त मुझे बता रही है कि ये गाना मुझे बड़ा पसंद है, तो मैं खुद भी देखता रहा, सुनता रहा। तो मैंने एक दिन नोट किया कि एक पैन शॉट होता है कैमरा की लैंग्वेज में। ये 1982 की फिल्म इन्होंने लिखा है, आई थिंक उस दौर में डिजिटल नहीं था इतना, तो वो शॉट इतना अच्छा रहा होगा कि वो कैमरामैन उसको रखना चाह रहा होगा, या मतलब ऑब्वियसली डायरेक्टर या प्रोड्यूसर रखना चाह रहे होंगे, और उसमें सम हाउ एडिटर ने उसे उल्टा लगा दिया, यानी जो ट्रक सीधा जा रहा है वो पीछे की तरफ आ रहा है। वो बाकायदा एक पैन शॉट है वैली का, जिसमें बाकी सब बहुत खूबसूरती है, तो उस चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। इसलिए कहते हैं कि अपने गुण देखिए व्यक्ति के अंदर, अवगुण मत देखिए, उसमें गुण देखिए। और ऐसे ही मैं गुण देखता हूँ आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस में। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन एंड दीपांशु खोरवाल, इनकी खासियत है हमेशा बहुत बाकायदे से, सलीके से, करीने से, तरीके से 5 मैसेज लिखते हैं, स्टार्स उसमें लगाए हैं। क्या ये सितारे मेरे लिए लगाए हैं? मैं भी तो छोटा मोटा जगमगाता सितारा हूँ। 5 चॉइस देते हैं, बड़ा आसान काम हो जाता है। आपकी पहली चॉइस ही मुझे मिल गई और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं वो प्ले करने जा रहा हूँ। उससे पहले कुछ एक लोग हैं वो मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी भी गाने में हमारा नाम ले लीजिएगा या हमारी तरफ से कोई भी गाना बजा दीजिए। उनमें से एक नाम है बागेश्वर निषाद का, गोरखपुर यूपी से। तो बागेश्वर जी, ये गाना आपकी पसंद, तो आपके लिए भी हम ये प्ले कर देते हैं, लेकिन टेक्निकली ये खोरवाल फैमिली के लिए है। और गाना है फ्रॉम द मूवी आराधना, और गाने के बोल हैं बागों में बहार है। ये क्यों नहीं बज रहा? क्योंकि हमने इसे चूज नहीं किया।

आज शुक्रवार है और आपका पसंदीदा कार्यक्रम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग, और आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं और बहुत से ही आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कहाँ चला गया, लिखते हैं भाई साहब आपकी आवाज़ गजब की है भाई, थैंक यू सो वेरी मच, हमें बड़ा अच्छा लगा आपकी प्यारी भरी ये बात सुन के। निम्बाराम गोदारा बिरलोका और नागौर राजस्थान से ये हमें लिखते हैं। ये कह रहे हैं जी गाने थोड़ा बरसात वाले कुछ भेजिए इनकी तरफ, कह रहे हैं हमारे काफ़ी गर्मी है, फसलें जल रही हैं, ऐसा कुछ लिखा है, बरसात करा दें। चलिए मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ, अगर आपको बरसात चाहिए आपकी फसलों के लिए तो ऊपर वाला जल्दी से आपकी मुराद पूरी करे। कोई गाना तो ज़रूर बजाऊँगा, जैसे बरसात वाला कोई और मेरे जहन में आता है, या आप लोग जिस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी मैंने फ़िलहाल एक किसी का गाना क्यों करके रखा है, और आप पूछेंगे कि भाई क्यों करके रखा है, क्योंकि कार्यक्रम ही यही है ना, क्यों करना पड़ता है। और गाना है सावली सलोनी तेरी झील सी आंखें, यानी आप सुनिए क्या गाना है। आपका मैसेज मुझे मिलते ही मैं आपका नाम ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि बारिश में, मैसेजों की बारिश में या मैसेजों की बाढ़ में आपका मैसेज कहीं छुप सा गया है, पर आपका गाना मैंने रिक्वेस्ट जो आपने किया था ढूंढ लिया है जी। आपका नाम भी मिल गया, कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालविया, मनीषा मालविया, हम सब चोर हैं फिल्म का ये गाना सावली सलोनी।

0: हल्का याग्निक और कुमार सानू साहब की आवाज में सांवली सलोनी तेरी झील से आंखें। मुझे याद है मेरी मुलाकात हल्का याग्निक जी से कुछ वर्षों पहले, और बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत ही प्यारा अंदाज। अभी कुछ दिन पहले देखा कि उन्हें कुछ हियरिंग लॉस हो गया है, तो हम स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं कि अलका जी जल्दी चंगी हो जाएं और फिर से एक्टिव एकदम से गाने वाने गाएं, क्योंकि ये देखिए किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, तो ध्यान रखें बच्चे। स्पेशली ये कुछ वायरस रिलेटेड इशू होता है उससे उन्हें हुआ है, वरना कुछ लोगों को हियरिंग लॉस जाना ऊँचे गाने सुनने की वजह से भी। आजकल देखिए बच्चों को मना किया जाता है कि हाई वॉल्यूम पे हेडफोन्स लगा के या ईयरबड्स लगा के पूरा दिन ना सुना करें, बहुत कम टाइम के लिए हेडफोन्स का इस्तेमाल करें और ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए, एक कारण वो भी है। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौट के आएंगे, आप यूं ही जुड़े रहें आकाशवाणी रेनबो के संग।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

वेलकम बैक है जी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज़। और कार्यक्रम आपका अपना वही पसंदीदा रिक्वेस्ट बेस्ड सॉन्ग बेस्ड शो, वो कार्यक्रम जहां अपनी पसंद के गाने आप हमसे कह देते हैं बस, और फिर इंतजार करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उस इंतजार को ज्यादा ना कराया जाए। जैसे अनुज राठी मेरठ से, बड़ी देर से इन्होंने मैसेज बार बार रिपीट भी किया, 2-3 बार लिख दिया है। वैसे बहुत स्मार्ट लग रहे हो भाई, ये वाइट टी शर्ट में आप। पहले तो भाई अनुज जी, माँ वैष्णो देवी के आप दर्शन करके, आपकी प्रोफाइल पिक पे देख के बता रहा हूँ, घर वालों के साथ गए थे, कैसे गए थे, किसी ने भेजा था, कुछ मन्नत है, कुछ हमारे साथ बताना चाहेंगे, है ना? एक मन्नत शाहरुख खान की है, एक मन्नत आपकी, वैसे वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो आप मुझे बताइए भाई, थोड़ा स्टोरी होनी चाहिए गाने के पीछे, जिनके लिए आपने अपनी फ्रेंड के लिए ये रिक्वेस्ट किया है, तो हम

0: बजा देते हैं। बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स में से एक ये है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का। राजा हिंदुस्तानी फिल्म के बहुत से गाने हैं, जब भी मैं ये कार्यक्रम करता हूं कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट इस फिल्म से जरूर आती है। और अगर आप अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ या पहली दफा इत्तेफाक हुआ है तो नमस्ते हाय जरूर लिख के भेजिएगा, हमें पता चलेगा कि कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। 9868107070 हमारा नंबर है, इस पर आपने व्हाट्सएप करना है, फिल्म का नाम, गीत के बोल, अपना नाम, एंड यू जस्ट हैव टू रिलैक्स आफ्टर दैट, सेंड इट अक्रॉस।
1: जी कर
0: डिमांड कीजिए हुजूर, हक से मांगिए, क्योंकि ये है आपका अपना प्रिय स्टेशन।

अब जब हम इन गानों में खो ही गए हैं और जाहिर सी बात है मैं अपनी प्लेलिस्ट देख रहा हूँ, यानी जो गाने मैं बजा चुका हूँ उसको बाकायदा हमें डिटेल्स अपने हाथ से लिखनी भी पड़ती हैं, तो मैं देख रहा हूँ अलका जी, कुमार सानू, उदित जी, इनके गाने सारे हमने प्ले किए, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ भी आपने बीच में सुनी, लता जी, किशोर, सुरेश वाडेकर, इन सब का, और इसी दौर में हमें वापस आप लोगों को ये गाने पसंद आ रहे हैं। जैसा लिखते हैं पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, कह रहे हैं वेरी नाइस प्लेलिस्ट। जी मैंने नहीं बनाई सर, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मतलब इसमें मेरी कोई बढ़ाई की बात नहीं है, ये तो आप ही लोग हैं जो तुरंत तुरंत हमें सुन रहे हैं और अपनी पसंद के गाने हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। और वैसा ही आपने दो या तीन गाने लिखे, उसमें से एक रिक्वेस्ट मैं आपकी ज़रूर प्ले करने जा रहा हूँ। पंकज जी, आपने मांगा है चालबाज फिल्म से ना जाने कहां से आई है, तो ये गाना बज रहा है आपकी पसंद का, खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, आप आकाशवाणी की महफिल में हैं। हमारा ऑन एयर ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज ऑन एयर, उसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद हमारे सभी स्टेशंस को आप ट्यून इन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे एलियन दोस्त भी सुनते हैं, अरे ऐसा बोलने में क्या जाता है, सबको साथ लेके चलना है ना। तो हम ये कह रहे थे 9868 10 70 70 पर कीजिए व्हाट्सएप, जुड़ जाइए हमारे साथ, अपनी पसंद का गाना, फिल्म का नाम, गाने के बोल, अपना नाम भेज दीजिए मुझ तक, मैं हूं आपके साथ रंजन।

प्यारा गाना गाना ये वो दौर था जब इतने आइटम सॉन्ग्स नहीं होते थे फिल्मों में, ऐसे आजकल स्पेशलाइज्ड आइटम सॉन्ग्स होते हैं। श्रीदेवी जी क्या खूब लग रही हैं इसके अंदर, साथ में है सनी देओल, मैं साथ साथ देख भी रहा था चलचित्र, यानी पिक्चर।

0: गांधी, डॉक्टर प्रकाश गोगिया, विजय नारंग, सुरेंद्र खुराना, मोहम्मद सईद अब्बासी, कमलेश कुमार, चांद खान, मुर्तजा खान, ये एक ही मैसेज में इतने सारे इन्होंने नाम लिखे हैं। लोफर फिल्म का एक गाना सुनना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा ढूंढूं, दो चार यहाँ पे रिक्वेस्ट और जो लोगों ने भेजी हैं उनके नाम भी पढ़ दूं, क्योंकि मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जाने वाला हूं। नमस्कार लिख के भेजा है, शुक्रिया लिखा है इनका, हो सकता है मैंने गाना बजा दिया हो, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अभी इसमें कहना पड़ता ना, कल को हमें भी आपसे सॉरी ना मांगनी पड़े, समझा करो। वरुण वैष्णव वार्षणय लिख रहे हैं अलीगढ़ से, गुड आफ्टरनून सर जी, और अमरनाथ, श्री अमरनाथ यात्रा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, सभी लोगों को। कैलाश खेर का इन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया है, बम लहरी, मैं देखता हूँ मेरे पास होगा तो ज़रूर प्ले करूँगा। फिलहाल लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आएंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। कार्यक्रम है मेरा वाला सॉन्ग।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि क्यों भाई गाना क्यों किया है, इसलिए आपके लिए प्ले करेंगे। कैलाश खेर साहब की आवाज में बम लहरी जा रहा है, अभी पीछे मैंने बताया जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी। यूं ही सुनते रहे मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर।

सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग। अब देखिए समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन जितनी रिक्वेस्ट हो सकेंगी ज़्यादा से ज़्यादा आई ट्राई टू स्क्वीज इन। जैसे अगला गाना हमारे पास रिक्वेस्ट किया है, हौले हौले गाना रब ने बना दी जोड़ी से, और पुनीत रावत हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया, ऋषिकेश से लिखते हैं। और एक गाना और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, वो तो मैंने आपका मैसेज देखा ही नहीं सर। देखिए क्या होता है, आप एक से ज़्यादा मैसेज लिखते हैं तो पहले नज़र जिस पे गई वो हमने खोजा, और ये गाना बड़ा प्यारा है, मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट है। तो फिर आप और मैं मिलके पुनीत रावत उड़ाते हैं इस गाने की दावत, और बाकी सब लोग भी, क्योंकि खाने का टाइम है भाई, भूख लगी हुई है, 2 बजे के टाइम लोग लंच करते हैं आमतौर पे। एंटरटेनमेंट की दावत आपके साथ आकाशवाणी रेनबो पर, सुनते रहिए मेरा वाला सॉन्ग।

चलिए जी, अब जाने का समय हो गया, क्योंकि देखिए हमें ये इशारा मिल जाता है, अगली आरजे आ गई हैं ज्योतिका सिंह, वो आशियाना में आपके साथ रेनबो डेस्टिनेशन में रहेगी आज, और कहाँ की सैर कराती हैं उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। बस जाते हुए आपको आखिरी गाना मेघा रे रिक्वेस्ट किया है, वो हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं। और आपका नाम भी मैं पढ़ दूँ? अच्छा, आप नाम नहीं लिखती हैं या लिखते हैं? आप सिर्फ एक गुलाब भेजते हैं, नमस्कार का इमोजी हमने एक्सेप्ट कर लिया, और मुझे रांझना सर आप लिखते हैं बड़े प्यार से, जब भी कार्यक्रम में हम आपका ये मैसेज देखते हैं, तो हम इसी तरह रहेंगे, कोई बात नहीं, आप नाम मत अपना जाहिर कीजिए, आपकी पसंद का गाना जा रहा है। बाकी सब लोगों का मैसेजेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ पर रंजन कहता है अलविदा बाय बाय। जाते जाते एक आध नाम और पढ़ दूँ, फारुक अली का भी मैसेज मेरी नज़रों के सामने है, और खंडवा हसनपुर गांव से इन्होंने, इनका मेरे ख्याल से मैंने गाना प्ले भी किया था कि नहीं, रह गया तो अगली बार सही। और सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल से, सभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और मैं हूं आपकी दोस्त ज्योतिका। स्वागत है आप सबका रेनबो डेस्टिनेशन में। आज हम चल रहे हैं एक ऐसे शहर की तरफ जहां वक्त सिर्फ गुजरता नहीं महसूस किया जाता है, जहां सुबह सूरज से पहले गंगा के किनारे जगती है और शाम दियों की रोशनी में दुआ बन जाती है। ये है वाराणसी, बनारस या आप इसे काशी भी कह सकते हैं। कहते हैं दुनिया के सबसे प्राचीन और लगातार बसते हुए शहरों में से ये एक है। यहां हर गली एक कहानी सुनाती है और हर घाट एक नई सोच दे जाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं बनारस के रंगों के साथ, सुरों के साथ और उसकी रूहानियत के साथ।

दोस्तों, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि बनारस का सबसे खूबसूरत वक्त कौन सा है, तो मेरा जवाब होगा सुबह ए बनारस। जी हाँ, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन विद मी ज्योतिका, और आज हम बात कर रहे हैं बनारस की। सोचिए, आसमान अभी पूरी तरह रोशन भी नहीं हुआ, गंगा का पानी बिल्कुल शांत है, हल्की सी ठंडी हवा चल रही है, और धीरे धीरे सूरज की पहली किरणें गंगा पर मानो जैसे सोना बिखेरने लगती हैं। इसी वक्त अगर आप एक छोटी सी कश्ती में बैठकर घाट के पास या घाट के सामने से गुजरें, तो बनारस अपनी असली पहचान दिखाता है। यहां लगभग 80 से ज्यादा घाट हैं, और हर घाट की अपनी एक कहानी है। 80 घाट की सुबह योगा और आप कह सकते हैं क्लासिकल म्यूजिक के लिए मशहूर है। दशाश्वमेध घाट अपनी भव्यता के लिए, और कुछ घाट ऐसे भी हैं जो हमें जिंदगी और उसके सफर के बारे में गहरा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बनारस की पता है सबसे खास बात यह है कि यहां कोई जल्दी में नहीं दिखता, सबके पास बहुत वक्त है, क्योंकि सुकून है खुद के लिए, दुआ के लिए, और गंगा को बस चुपचाप देखने के लिए। और शायद इसीलिए कहते हैं कि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। बने रहिए मेरे साथ सिर्फ यहां रेनबो डेस्टिनेशन विद मी ज्योतिका।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो और शो का नाम है रेनबो डेस्टिनेशन। दोस्तों, बनारस की रूह को महसूस करना हो तो सबसे पहला नाम आता है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। अगर आप भी बनारस की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो पहुंचना, मैं बता दूं, यहां काफी आसान है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के कई बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता से वेल कनेक्टेड है। अगर आप ट्रेन से सफर पसंद करते हैं तो वाराणसी जंक्शन, बनारस रेलवे स्टेशन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी यहां पहुंचा जा सकता है। रोड की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों से रेगुलर बस सर्विसेज और हाईवेज के थ्रू आसानी से आप यहां पहुंच सकते हैं। और वहीं मंदिर की अगर मैं आपसे बात करूं तो मंदिर के आसपास की गलियां बहुत पतली हैं, इसलिए गाड़ी थोड़ा पहले ही पार्क कर लीजिएगा। पैदल चलना या ई रिक्शा लेना सबसे ज्यादा यहाँ कन्वीनियंट है। और फिर शाम होते ही दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती, सच मानिए ये सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। अगर आप आरती देखने जा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी पहुंचिए ताकि आपको अच्छी जगह मिल सके। अगर मौका मिले तो कश्ती से आरती देखना भी आपको याद रहेगा हमेशा।

बनारस की खूबसूरती सिर्फ उसकी आस्था तक सीमित नहीं है। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है सारनाथ, जहां भगवान बुद्धा ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ का शांत माहौल, धार्मिक स्तूपा और म्यूजियम हर उस मुसाफिर को पसंद आता है जो हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी में दिलचस्पी रखता है। अगर आप बनारस में 2 या 3 दिन का सफर प्लान कर रहे हैं, सो लेट मी टेल यू, 1 दिन सारनाथ के लिए जरूर रखिएगा। वैसे बनारस घूमने का सबसे आसान तरीका है ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा या आप साइकिल रिक्शा भी ले सकते हैं। पुराने शहर की जो गलियां हैं बड़ी पतली संकरी होती हैं, तो गाड़ियां वहां अंदर तक जाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपना जो बैकपैक है उसको हल्का रखिएगा और कंफर्टेबल फुटवेयर हमेशा काम आता है। एक और छोटी सी ट्रैवल टिप दे दूं आपको, बनारस को जल्दी जल्दी कवर मत करना। इस शहर का असली मजा तब आता है जब आप थोड़ा रुकते हैं, घाट पर बैठते हैं और बिना किसी जल्दी के इसकी रफ्तार को महसूस करते हैं। बने रहिए यहां रेनबो डेस्टिनेशन में।

अब बात करते हैं बनारस के स्वाद और रंगों की। सुबह की गर्मा गर्म कचौड़ी सब्जी, मीठी जलेबी, ठंडी लस्सी और आखिर में मशहूर बनारसी पान, ये सब इस सफर को और भी यादगार बना देते हैं। शॉपिंग के अगर आप शौकीन हैं तो बनारसी सिल्क साड़ी यहाँ से ले जाना मत भूलिएगा। इनकी खूबसूरत बुनाई और कारीगरी की तारीफ पूरी दुनिया करती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बनारस आने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा है, तो मैं बता देती हूँ, अक्टूबर से मार्च का जो मौसम है सबसे सुहाना माना जाता है। इस दौरान घूमना भी आसान रहता है और सुबह के जो बोट राइड्स हैं और शाम की गंगा आरती का आनंद भी और ज्यादा आता है। एक और छोटी सी बात, अगर आप किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वहाँ के नियमों का और परंपराओं का सम्मान जरूर कीजिएगा। इसी में सफर की असली खूबसूरती है।

और दोस्तों, इसी के साथ बनारस का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। आज हमने देखी सुभाय बनारस और महसूस की गंगा आरती की दिव्यता। घूमने तो हम सारनाथ पहुंच गए थे उस शांति में, और ये भी जाना कि इस शहर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। साथ ही कुछ छोटी छोटी ट्रैवल टिप्स भी मैंने आपके साथ शेयर करी, ताकि जब आप बनारस आए तो सफर और भी सुहाना बन सके। क्योंकि बनारस उन शहरों में से है जहां हर मुसाफिर अपनी एक अलग कहानी लेकर लौटता है। कोई यहां आस्था ढूंढने आता है, कोई इतिहास, कोई संगीत, और कोई बस कुछ पल की सुकून भरी खामोशी। मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे थे रेनबो डेस्टिनेशन, सिर्फ आकाश वाणी FM रेनबो पर। और अब इस धुन के उस पार आप सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। मेरी मुलाकात होगी आपसे अब 4 बजे अल्फा जन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नए सफर प्लान करते रहिए, और याद रखिए, मंजिल खूबसूरत हो या ना हो, सफर हमेशा दिल से कीजिए।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसी जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है।
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
2: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं। और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
2: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच

0: और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ?
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना नानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
7: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
7: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ मामा जी से पूछेंगे।
7: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
6: मामा जी।
8: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
6: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
8: ये तो बहुत अच्छी बात है
6: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
8: अच्छा अच्छा, तो ये बात है, आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
6: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
8: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भूर्ज वृक्ष कहा जाता है।
6: अच्छा, भूर्ज वृक्ष।
8: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है, इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे, हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही

0: जाती है।
1: पांडुलिपि ये हमें कहाँ मिली है?
2: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
1: अच्छा,
2: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
3: ये किस भाषा में है?
2: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
3: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
2: हाँ हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
3: अच्छा।
2: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
3: अच्छा।
2: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
3: अच्छा।
2: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
2: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
2: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
2: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
3: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
2: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
3: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
2: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
4: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
5: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
4: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि

हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। सहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ।

0: डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
1: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
2: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
1: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
2: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
0: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
3: अलख निरंजन।
4: ए साधु बाबा।
3: अब अच्छा,
4: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
3: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
4: क्या?
3: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
4: है?
3: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
4: अच्छा,
3: हाँ,
4: बहुत बड़ी फौज है।
3: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
4: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
3: अच्छा,
4: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
3: है? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
4: बिल्कुल है।
3: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
4: उसका भी इंतजाम है।
3: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
4: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
5: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
4: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
5: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
4: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ। बदन सिंह रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोला लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: हेलो
1: हेलो मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, हम धेमाजी असम से बिमोल बसुमतारी।
0: बिमोल बसुमतारी जी, और बताइए कैसे हो?
1: जी मैम, हम दुकान में है, अभी बहुत गर्मी है, धूप है।
0: क्या करेगा, गर्मी से सभी लोग परेशान है। वहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्या?
1: जी मैम, बारिश हो रहा है, हम लोग का खेत के लिए पानी नहीं है।
0: अरे वो तो बहुत परेशानी की बात हो गई ना।
1: जी जी,
0: तो क्या कर रहे हो? अगर पानी नहीं आ रहा है तो कहाँ से पानी लेकर खेत में डाल रहे हो?
1: जी मैम, पानी तो रुकना पड़ेगा, क्या करेगा, बारिश जब आएगा तो लगाएगा।
0: इस साल का बारिश क्यों इतना देर हो रहा है? यहाँ पे कोहिमा में तो दिन में बहुत गर्मी होता है, शाम को तो बारिश आता ही आता है। हाँ, थोड़ी ही पहले इतना गर्मी था, अभी जब मैं स्टूडियो पहुंची तो इतना बड़ा बारिश आने लग गया। और विमोद बसुमत्री जी, आपका कौन सा दुकान है?
1: मैं सिलाई का काम करता हूँ।
0: अच्छा,
1: कपड़ा सिलाई कर सकता हूँ और लगा रखता हूँ।
0: अच्छा, तो कितने बजे तक काम करते हो आप?
1: जी मैम, हम तो सुबह खेत में जाके फिर खाना पीना खा के 12 बजे को आ जाता है। जब खेत में काम नहीं होने से तो सुबह से आ जाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, तो बताइए, आज इतना गर्मी है फिर भी आपने कॉल किया, इसीलिए धन्यवाद। और बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
1: जी मैम, हम लोग को रेगुलर कस्टमर है, बहुत अच्छा लगता है, जो भी प्रोग्राम आता है तो ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सुनते रहता हूँ मैम। आज हमको सुनाना है मैम शकीरा का एक गाना, सुनाने से हो जाएगा थोड़ा अच्छा वाला।
0: शकीरा का?
1: जी जी, थोड़ा इंजॉय वाला।
0: शकीरा का? इतना गर्मी में आप नाच पाओगे क्या?
1: ये दुकान में बॉक्स में लग रहा हूँ ना मैम, पूरा सुन के अच्छा लगता है ना, गर्मी होने से गाना तो बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, तो फिर शकीरा का वो जो वर्ल्ड कप का गाना है वक्का वक्का, वो बजा दूँ क्या?
1: ये हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा।
0: वर्ल्ड कप भी चल रहा है और थोड़ा अगर वो बजा दिया
1: जी,
0: तो
1: जी, जी,
0: शायद जो अड़ोस पड़ोस के लोग जो आपकी दुकान के बगल से गुजर रहे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा वर्ल्ड कप का मजा आ जाए।
1: जी जी, मैं तेरा दोस्त लोग के लिए डेलीगेट करना चाहता हूँ।
0: जी बताइए बताइए।
1: हम लोग का हाईकोम मुंडा है, अमोल बसुमतारी है, रमेश पत्र है और रुकु बिला मीठा है, वो तो अभी वर्ल्ड कप देख रहे हैं उधर ही।
0: हाँ हाँ, आप नहीं करते हो क्या?
1: हम लोग बहुत दूर है ना, हम लोग मैम नहीं गया है।
0: अच्छा अच्छा, कोई बात।
1: और है हितेंद्र दास है।
0: हाँ जी।
1: और सुनीता बसुमतारी, अंजलि बसुमतारी और है दिवासी हजरिका और मंदिरा है।
0: हाँ जी,
1: सबके लिए डेलीगेट है मैम और आपको भी।
0: मैं उम्मीद करती हूँ जो जिन जिन लोगों का भी आपने अभी नाम लिया है वो सब अभी रेडियो सुन रहे होंगे। और अमल जी, जैसे आपने बताया इतने सारे लोगों का नाम, आपको सभी लोगों के साथ आपका जान पहचान है या फिर रेडियो से ही मुलाकात हुई है?
1: जी मैम, हम लोग का रेडियो इतना ग्रुप है ना, सबके लिए हम लोग अच्छा लगता है, हम लोग बातें बीच बीच में होते रहता है।
0: अच्छा,
1: फिर अच्छा लगता है और रेडियो इतना अच्छा लगता है मैम, क्यों नहीं, क्योंकि बोलने के लिए जाने से हम लोग रेडियो से इतना दूर दूर से हम लोग जान पहचान है।
0: वही वही,
1: फिर इतना अच्छा भी बातचीत हो जाए, जान पहचान होकर इतना अच्छा लगता है इतना दूर में होने से।
0: लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ फोन चलता है अभी या फिर टेक्नोलॉजी चलता है, लेकिन वो लोग जो भी बोल रहे हैं वो सब गलत है, क्योंकि रेडियो से भी हम अभी तक कनेक्ट कर सकते हैं, है ना अमल जी? तो चलो चलते हैं और सुनते हैं आपका ये जो गाना आपने पसंद किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी लोगों का नाम आपने लिया है वो लोग भी अभी सुन के मजा ले रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच अमल जी, ऐसे ही जुड़े रहिए एफएम ट्रक बैंड के परिवार से। ऑल राइट, बाय बाय। Well, my dear listeners, it's Amal Basumatri laga gana, Shakira laga, it's Honi Lohabo. Let's go ahead and listen to this wonderful track, Waka Waka.

0: तो सर एक मूवी आप सर्च कर सकें तो वो कर दीजिए।
1: वो बताए।
0: जी सर, मूवी का नाम है क्या दिल ने कहा।
1: क्या दिल ने कहा? हाँ, क्या दिल ने कहा, कौन से गाना चाहिए इसमें से?
0: ये सर वो सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो मेरे।
1: ओके, ठीक है, बजा देगा, ठीक है, लेकिन गाना बहुत लंबा है तो खटा खटा तो कर देना पड़ेगा, है कि नहीं?
0: जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आधा चलाइए, कोई दिक्कत
1: हाँ,
0: नहीं है।
1: क्योंकि दूसरा कॉलर भी होता है तो ना।
0: नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, वो तो हम कोई दिक्कत नहीं, आप तो आधा चला देना सर।
1: ओके ओके, ठीक है,
0: कुछ
1: आप
0: दोस्तों को याद कर लूं,
1: हाँ याद कर लीजिए।
0: हनाया मैथम, पूरन वर्मा जी, राकेश जी, पुरुषोत्तम कुमार जी, भगवान सिंह परमार जी, अमल जी, विमल जी, और हमारे मित्र रहेंगे रमेश प्रजापति जी, रमेश पात्रे जी, और तमाम सुनने वाले, और स्पेशली आप सर।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो आप ये गाना सुन लीजिए, मैं बजा देता हूँ। ओके, थैंक
0: थैंक यू सर।
1: यू थैंक यू। वेल लिसनर्स, कैन फर्स्ट कॉलर ऐसे इतु गाना मंगे से था सजना तेरी प्यार में। यस, इतु गीत होने वो अपने लोग के उदित नारायण और अलके निकला का वास्ते फिल्म से क्या दिल ने कहा।

0: हेलो
1: जय माता दी।
0: जय माता जी।
1: मेरा नाम है पूरण वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमल बुगला।
0: ओके तो
1: जी
0: पूरन
1: सर,
0: जी बताइए, आज कौन सी मूवी का सुनना है आप?
1: जो सर फिल्म का नाम रहेगा अनजाना।
0: अनजाना।
1: जी
0: अंजना। अंजना तो नहीं है हम लोग के पास।
1: तो फिर मूवी का नाम रहेगा राजा।
0: राजा।
1: हाँ जी,
0: हाँ राजा। कौन से गाना सुना है राजा का फिल्म से?
1: इसमें गाने कौन कौन से सर मेरे को बताओ।
0: आप पहले से क्यों तलाश करके नहीं रखा है जब
1: नहीं जी
0: सुनाई
1: सर,
0: है?
1: वो कह एक गाना मेरे को बोल याद नहीं आ रहा ना, इसलिए।
0: हाँ बोल है, आंख मिलाते डर लगता, आंख तेरी चल के तो अखियां मिलाओ कभी, और जा सजना तुझको भुला, किसी दिन बनूंगी मैं राजा, नर्जे मिला दिल धड़का, फूल मांगो ना बाहर। इस गाना से इतना गाना से कौन सा गाना सुनना है?
1: इसमें नगर मिला कैसा का आपने जो बोला था ना, वो गाना सुनूंगा मैं।
0: ठीक है बजा देगा।
1: जी
0: ओके
1: जी
0: ओके
1: तो सबसे पहले तो आप है
0: ओके। हाँ
1: जेकब सर है ना आप
0: हाँ जी, हाँ जी, थैंक
1: जी। तो सबसे पहले आपका नाम भी बहुत प्यारा है और आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है। तो
0: यू।
1: सबसे पहले आप है और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है, अमल है, विमल है और रमेश पात्रे है और जितने भी लाइव कॉलर है उस जिसका भी श्रोताओं का नाम छूट गया, शिवा लोहार के साथ जो पहला कॉल उनका लगा था, तो उनके लिए भी रहेगा। थैंक
0: ओके ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके थैंक
1: यू सर, धन्यवाद।
0: यू थैंक यू। प्रोग्राम तो आपको होने वो अपने लोग के उदित नारायण और अलका याग्निक लगा वास्ते फिल्म से राजा।

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार।
1: जी। मैं ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: ओके भगवान सिंह जी, बताइए कौन से फिल्म का सुनना है आज गाना?
1: सर बरसात है, फिल्म बरसात।
0: बरसात।
1: जी
0: हाँ बरसात, हाँ बरसात है। कौन से वाला बरसात सुनेगा? टू थाउजेंड
1: बॉबी
0: फाइव
1: देवल वाली, बॉबी देवल, बॉबी देवल।
0: बॉबी देओल का,
1: हाँ
0: 2005 का होगा ये तो ना, मेरे
1: जी,
0: ख्याल में।
1: हाँ
0: तो कौन से गाना सुनना है इससे?
1: दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा,
0: दिल पागल दीवाना।
1: ये प्यार करेगा। जी
0: ओके, कुमार शानू की आवाज़ में ना?
1: जी हाँ सर। तो
0: ओके ओके ठीक है, बजा देगा।
1: सर हम कुछ दोस्तों को याद करना चाहेंगे सर।
0: ओके करो।
1: तो पहले तो है शिवा लोहट जी हैं,
0: ओके
1: उसके बाद तनुश्री बेटिया हैं, अंजलि भस्मतारी, रमेश पात्रे हैं, अमल
0: जी,
1: भस्मतारी, विमल भस्मतारी, रमेश प्रजापति जी, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं शिमला से, आशुतोष जी, अविनाश जी हैं, प्रेमसिंह सिसोदिया जी हैं, देसी सिंह राजपूत जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी, भाईकन मुंडा जी, रंगाधर सावनकर जी हैं, और श्रीपाल गोयल जी हैं, सुनील झा जी हैं, और दिलीप पाहुजा जी हैं। इन सबके साथ
0: ओके
1: जाएंगे सर। धन्यवाद
0: ओके ठीक है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके।
1: सर जी।
0: तो लिस्टर्स का नको होने वो अपने लोग के कुमार शानू का वास्ते फिल्म से बरसात।

0: हेलो।
1: जी भैया नमस्कार
0: हाँ नमस्कार।
1: जी। हम योगेश जाट बोल रहे हैं,
0: ओके रमेश ना,
1: योगेश
0: ओ योगेश जांगड़े।
1: जांगड़े
0: ओके आज कौन से गाना सुनना है योगेश जी?
1: जी। हमें सुनना है फिल्म सावन।

0: आने दो का टाइटल सॉन्ग
1: सवन
0: जी, पावन को आने दो,
1: सवन को आने दो
0: जी।
1: ओके कौन से गाना सुनना है? सवन को आने दो
0: उसका टाइटल है,
1: टाइटल सॉन्ग।
0: हाँ जी,
1: जसपाल सिंह और कल्याण मित्रा और
0: कौन
1: आवाज में? ओके ठीक है, बजा देगा। ठीक है बजा देगा। और किसी को डेडिकेशन करना है ये गाना?
0: हमारे हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के तमाम साथियों को।
1: ओके ठीक है ठीक है ठीक है, तब तो बजा देगा, सुन लीजिए। ओके
0: जी,
1: ओके थैंक यू,
0: थैंक यू।
1: वेल प्रोग्राम तो को हुनी वापनों के जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और कौरसलागा वास्ते फिल्म से सवन को आने दो।

0: हेलो,
1: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग।
1: मैं आशुतोष देवनाथ त्रिपुरा से बोल रहा हूँ।
0: ओके आशुतोष जी, बताइए कैसे हैं आप।
1: बढ़िया हूँ सर, और फूल लग जाने से तो और भी अच्छा हो जाता हूँ।
0: ओके ओके, कौन से फिल्म का गाना सुनना है आज आपको।
1: सर जी, आज मुझे सुना दीजिए, फिल्म का नाम है जाने दुश्मन।
0: जाने दुश्मन।
1: ये 1979 का फिल्म है जी।
0: हाँ जाने दुश्मन ना। तलाश कर रहा है मैं। ओके
1: जी, ढूंढिए आप।
0: जाने अनजाने। जाने जान जाने जान जाने दुश्मन तो नहीं है हम लोग के पास।
1: अच्छा, तो
0: नहीं
1: सुना दीजिए, फिल्म का नाम है रिश्ता कागज का।
0: रिश्ता कागज का।
1: ये 1983 का फिल्म है जी।
0: रिश्ता मेरे ख्याल में ये भी नहीं है। हाँ ये भी नहीं है। बहुत बहुत हाँ
1: फिल्म का नाम है आसपास
0: आसपास ना।
1: जी।
0: आसपास नहीं है। आसपास भी
1: आसपास भी नहीं है। फॉरेड फॉरेड,
0: फॉरेड
1: हाँ फॉरेड,
0: F-O
1: FARED
0: FARED।
1: जी।
0: फारेब। फारेब भी नहीं है तो आशुतोष जी।
1: फिल्म का नाम है आजाद।
0: आजाद तो हो सकता है। आजाद
1: ये 1978 का फिल्म है। आजाद
0: आजाद तो है। हाँ आजाद है।
1: मैं हूँ तेरे प्रेम दीवानी।
0: मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी। लता मंगेशकर का ना।
1: जी,
0: ठीक
1: और
0: है।
1: इस गाने को लिखा है संगीत का सबसे बड़ा राइटर आनंद बख्शी जी ने,
0: हाँ आनंद बख्शी जी ने
1: और
0: लिखा है।
1: इसका सुर
0: म्यूजिक
1: दिया है
0: म्यूजिक दिया है
1: मशहूर हिंदी गायक
0: आर डी
1: आर डी
0: बर्मन।
1: बर्मन।
0: आर डी बर्मन।
1: बिल्कुल।
0: ठीक है ठीक
1: और
0: है,
1: सर जी, आपका इजाजत हो तो मैं दो चार दोस्तों को याद करता हूँ।
0: कर लीजिए कर लीजिए।
1: पहले आसाम से प्रेमजी चक्रवर्ती जी है,
0: ओके
1: और त्रिपुरा से है अविनाश तेली भैया,
0: ओके
1: और
0: okay.
1: मध्य प्रदेश से है भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति, प्रेम सिंह भाई,
0: ओके okay.
1: और नेटवर्क का सारे श्रोताओं को लेकर सुनना है।
0: ठीक है ओके ओके। शायद ये लास्ट कॉल भी हो सकता है अभी क्योंकि समय पहुंच रहा है अभी। ओके
1: मेरा किस्मत बहुत अच्छा है सर जी, लग गया मेरा फोन।
0: ओके ठीक है। आपका किस्मत तो अच्छा है। हाँ तो ठीक है आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके ओके
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार। वेल लिसनर्स खान, प्रोग्राम भी शेष कुरबलेटम हुई जा से। प्रोग्राम शेष ते होने वो अपन लोग के लता मंगेशकर लगा हुआ स्टे फिल्म से आजाद और तो इतु गाना लोगों ते प्रोग्राम तो शेष कर हुआ जी राति कारण और हमारे 7:10 और 7:20 हो लगे अपनी कान हुनी हो नागामीज और इंग्रजी ते रिजनल खबर तारपते 7:30 पर आज ए रेडियो रिपोर्ट ऑन सेलिब्रेशन ऑफ कॉप्स डे এণ্ড কোঅপাৰেটিভ উইক যোনটো আজি লগ ভৱন কহিমাতে লোৱা হৈছে এইটোৰ ওপৰতে প্ৰগ্ৰাম দিয়া শুনিব। যোনটো প্ৰডিউচ কৰি আছে কে ৰোচা আৰু কেডিমেনলা আৰু নাৰেশ্যন দিয়া হৈছে ভেদেলু আৰু ইটো পাছতে আপুনি গান ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিক প্ৰগ্ৰাম দিয়া শুনিব আৰু আজি 9:30 হিন্দী ফিল্ম গান নাথাকিব কেলে মানে 9:30 পূৰ্বতৰ বাণী এইটো প্ৰগ্ৰাম থাকিবলৈ আছে যোনটো প্ৰগ্ৰাম এন ই এছ শ্বিলং পৰা ৰিলে কৰি দিয়া হ'ব। চ' আপুনি চব টিউন কৰি থাকিবি আৰু আজি ৰাতি যোনখনে ফোন কৰিছে সবকে ধন্যবাদ। আপুনি গান ফোন কৰিছে এইটো কাৰণে আপুনি গান ফোন কৰি দিয়াৰ কাৰণে আপুনি গান এইটো মই লগা প্ৰগ্ৰামটো ভাল পৰা যাব পাৰিছে আৰু প্ৰগ্ৰামটো শুনি কিনে ভাল লাগিছে চব মানুহে ভাল লাগিছে বোলা কৈ মই পূৰা বিশ্বাস আছে এইটো নিচিনা আজি ৰাতিৰ কাৰণে এইটো গীত লগতে প্ৰগ্ৰামটো শেষ কৰি হ'ব। তো শুনি কিনে এনজয় কৰিবি।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर

0: बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का

0: शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Promos.
1: A new business venture?
0: Or updating an existing one?
1: Wishes on special occasions?
0: Northeastern Service is here for you.
1: We offer airtime advertisements at reasonable rates.
0: In English and in Hindi.
1: We are available on the app News On Air.
0: On FM 100.1 MHz.
1: On AIR any channel of DTH.
0: For bookings and rates, call us on
1: 940-234-8899.
0: Or email us on
1: csunesair@gmail.com.
2: यह आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा है जिसका प्रसारण शिलोंग से किया जाता है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पूर्वोत्तर वाणी, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों से हिंदी भाषा में विविध विषयों पर विशेष प्रस्तुतियां प्रसारित की जाती हैं। आज के अंग में सुनिए प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन पर आधारित एक जानकारीपूर्ण प्रस्तुति। इस कार्यक्रम का वाचन पामोचे ने किया है। इसके निर्माता है श्री रॉयचंद्र यिंगथम तथा यह प्रस्तुति आकाशवाणी चुराचांदपुर की ओर से है। तो आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम।
3: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पामोन चिंग। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन के विषय में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का भी जोर नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में किसी भी मुल्क और समाज को भी कभी भी अपने गिरफ्त में ले सकते हैं। एक प्राकृतिक आपदा पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न एक बड़ी घटना है। यह जीवन और संपत्ति में एक बड़े नुकसान का कारण बनती है। ऐसी आपदाओं के दौरान अपना जीवन खो देने वालों की संख्या से कहीं अधिक संख्या ऐसे लोगों की होती है जो बेघर और अनाथ होते हैं। अनाथ होने के बाद जीवन का सामना करते हैं, यहाँ तक कि शांति और अर्थव्यवस्था भी प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। सदियों से प्राकृतिक आपदा मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही है। जब प्रकृति में असंतुलन की स्थिति होती है तब आपदाएं आती है, जिसके कारण विकास एवं प्रगति बाधक होती है। भारत की प्राकृतिक संरचना में पर्वतों, नदियों, समुद्र आदि का बहुत ही महत्व है। इनसे असंख्य लोगों की आजीविका चलती है, लेकिन जब प्रकृति में असंतुलन की स्थिति होती है तब आपदाएं आती है। इनके आने से प्रगति बाधित होती है और परिश्रम तथा यंत्र पूर्वक किए गए विकास कारण नष्ट हो जाते हैं। ज्योति विज्ञान के अनुसार जब ग्रह बुरी स्थिति में होती है तब आपदाएं आती है। धर्म शास्त्र के अनुसार जब पाप बढ़ती है तब पृथ्वी पर आपदाएं आती है। आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी, सूखा, बाढ़ आदि। प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त विपत्तियां मानव जनित भी होती है। मानव जनित आपदाएं है जैसे सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी आगजनी, शरणार्थी समस्याएं, रेल व सड़क दुर्घटना आदि है। इनके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार की आपदाएं हैं जो मानव जीवन को तहस नहस कर देते हैं। भारत में देखेंगे तो 1980 से लेकर 2010 के बीच में समुचित आपदाओं में सूखा 7 बार, भूकंप 16 बार, महामारी 56 बार, अत्यधिक गर्मी 38 बार, बड़े पैमाने पर सूखे 34 बार, तूफान 92 बार, ज्वालामुखी 2 बार आ चुके हैं, जिसमें जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ और बहुत ही बड़े आर्थिक और जनजीवन की हानि हुई। प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती है। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे संतुलन बिगड़ रहा है। ये हमारी मनमानी का नतीजा है। इन आपदाओं को ईश्वर का प्रकोप या गुस्सा भी कहा जाता है। आज मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए वनों, मैदानों, पहाड़ों, खनिज पदार्थों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाएं आने लगी है। हमें सावधानी पूर्वक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे आपदाओं के कारण भारी मात्रा में जाल माल की हानि होती है। 1999 में ओडिशा में महाचक्रवात आया, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 2001 का गुजरात भूकंप कोई नहीं बुला सकता, इसमें 20,000 से अधिक लोग मारे गए। ये भूकंप 25 जनवरी 2001 में आया था, जिसमें अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, गांधीनगर, कांच, जामनगर जैसे जिले पूरी तरह नष्ट हो गए। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आया, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, दक्षिण भारत इसमें प्रभावित हुआ। इसमें 2,00,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। 2014 में जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़ आई, जिसमें 1200 से

0: अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इस तरह की आपदाएं कुछ समय के लिए आती है पर बड़ी मात्रा में नुकसान करती है। हर कोई इनके सामने बौना साबित हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं अपने साथ बहुत सारे विनाश लेकर आती है जिसमें धन जान का भारी नुकसान होता है। मकान घर इमारतें पुल सड़कें टूट जाते हैं, करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है। जिस शहर और गांव में आपदाएं आती है वहां पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। 1992 से लेकर 93 में इथियोपिया में भयंकर सूखा पड़ा जिसमें 20 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। आज भी हर साल हमारे देश में राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में सूखा पड़ता रहता है। प्राकृतिक आपदाओं से डरने की आवश्यकता नहीं वरन उससे निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये सत्य है कि हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ तैयारी कर सकते हैं। हम अपने जीवन और संपत्ति के नुकसान की भयावहता को कुछ कम कर सकते हैं। आज हम अपने स्टूडियो में चर्चा करेंगे प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन के उपाय पर, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ देंगे श्री थंगवेल गांगते। आपका हमारे इस चर्चा में स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: प्राकृतिक आपदाएं कई प्रकार के होते हैं, आज हम कोशिश करेंगे लगभग उन सभी पर चर्चा कर सके। सबसे पहले चर्चा करेंगे भूकंप पर, जो कि हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं में से सर्वाधिक विनाशकारी रूपों में से एक है। आम आदमी के विचार में भूकंप तब आती है जब पृथ्वी की सतह अचानक हिलने लगता है, इसमें धरती में दरारें पड़ जाता है और तेज झटके लगते हैं, और ये भी माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर के प्लेटों में हलचल और टकरारें होने के कारण भूकंप आते हैं।
1: जी जी।
0: आप भूकंप के आने के कारण वजह विस्तार से बताएंगे और भूकंप के आने से क्या होता है इसके आने से नुकसान के बारे में भी बताएंगे। तो
1: जी बिल्कुल, देखिए भूकंप का साधारण अर्थ है भूमि का कंपन अर्थात भूमि का हिलना। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली क्रियाओं का प्रभाव परपटी पर भी पड़ता है और उसमें अनेक क्रियाएं होने लगती हैं। जब परपटी की हलचल इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह चट्टानों को तोड़ देती है और उन्हें किसी भ्रंश के साथ गति करने के लिए मजबूर कर देता है, तब धरती के सतह पर कंपन या झटके उत्पन्न हो जाती है और तब भूकंप आता है। भूकंप के आने से घर, मकान, इमारत, पुल, सड़कें आदि नष्ट हो जाते हैं। इमारतों में दबने से हजारों लोग की मौत हो जाती है और इतना ही नहीं करोड़ों रुपयों का भी नुकसान हो जाता है।
0: बिल्कुल सही। भारत के इतिहास में गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप सबसे विनाशकारी भूकंप से माना जाता है। सभी को याद होगा कि 25 जनवरी 2001 में गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।
1: जी जी।
0: काफी बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपयों का भी नुकसान हुआ था।
1: हाँ सही कहा आपने। इसके पश्चात हाल ही में 2-3 साल पहले आपने देखा होगा कि अप्रैल 2015 में नेपाल में एक विनाशकारी भूकंप भी आया था जिसमें करीबन 8,000 से अधिक लोग मारे गए और 2,000 से अधिक लोग घायल हुए थे। और इन दोनों देशों में हुई विनाशकारी भूकंप और विषय कई देशों में आए भी थे। भूकंप के कारण विनाश हुई नुकसानों की भरपाई अक्सर सरकार द्वारा उठाई जाती है।
0: इस विनाशकारी भूकंप से बचने के लिए आम आदमी को क्या उपाय तथा प्रबंधन लेनी चाहिए जिससे हम अपने जान तथा चीजों से नुकसान होने से कुछ हद तक बच सके।
1: जी, ऐसे समय में बाहर खुले में आ जाए, किसी भी इमारत के पास खड़े ना हो, किसी मेज के नीचे छिप जाए और जब तक भूकंप के झटके लगते रहें बाहर खुले स्थान में बैठे रहें और हो सके तो बिजली के लटकते हुए तारों से हमेशा अपने आप को दूर रखें,
0: नहीं तो करंट लग सकता है।
1: जी बिल्कुल।
0: भूकंप कभी पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, भूकंप कभी भविष्यवाणी की जा सकेंगे, लेकिन इसका पता कंप्यूटर पर काम करने वाले व्यक्ति को सिर्फ कुछ सेकंड पहले ही लग सकता है पता। हाल ही में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US जियोलॉजिस्ट सर्वे तथा कैलिफोर्निया के खनिज और भूभूगीय विभाग के भूकंप शास्त्री लगातार भूकंप की ऑनलाइन पर भविष्यवाणी कर सकने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे और किस प्रकार मुमकिन है और पता लगाया जा सकता है, आप इस पर और भी विस्तार से बता सकेंगे कि ये कहाँ तक सही है।
1: जी बिल्कुल, अब देखिए ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है ये आपातकाल में ऐसे आंकड़े भेजेगा जिसमें कंप्यूटर यूजर्स तक ईमेल भेजा जा सकेगा। ट्राइनेट का लक्ष्य है कि 600 शक्तिशाली गति सेंसर और 150 बड़े इंटरनेशनल मिलकर आने वाले भूकंपों के बारे में लोगों को सूचित करें, और अगर ये ट्राइनेट अपने प्रस्तावित कार्य को करने

0: समर्थ हुआ तो कैलिफोर्निया भूकंप क्षेत्र का निरीक्षण कर सकने वाला पहला राज्य होगा। इस प्रकार भूकंप का पूर्वानुमान लगाने की क्षमताएं विकसित हो चुकी है।
1: अगर ये ट्राइनेट अपने प्रस्तावित कार्यों को करने में समर्थ हुए तो सभी के लिए एक बहुत ही सफलता हासिल करने जैसा होगा।
0: जी हाँ बिल्कुल।
1: अब हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक आपदाएं बाढ़ पर। बाढ़ किसी बड़े शहर भूभाग का जलमग्न होना जिससे अपार जनधन की हानि होती है उसे बाढ़ कहलाते हैं। केंद्र बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1953 से लेकर 1990 के मध्य औसत रूप में प्रतिवर्ष 7,984 मिली हेक्टेयर के क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता रहा है। हमारे देश में न केवल बाढ़ प्रभावित भूभाग बढ़ता जा रहा है बल्कि बाढ़ प्रभावित जनसंख्याएं भी बढ़ती जा रही है। खाद्य एवं कृषि संगठन के एक ताजा अनुमान के अनुसार देश की लगभग 25 करोड़ आबादी उन क्षेत्रों में निवास कर रही है जहां बाढ़ के प्रकोप की आशंकाएं हैं। 2005 में मुंबई में भयानक बाढ़ आया जिसमें 5,000 लोग मारे गए जिसमें मुंबई शहर को पूरा तरह से रोक दिया गया था। भारत हाल ही में पिछले वर्ष केरला राज्य आए बाढ़ ने सभी को चौंकाना कर दिया। अचानक आई इस बाढ़ के कारण काफी नुकसान भी हुई थी और जान भी चली गई थी। ऐसे बाढ़ की स्थिति में बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?
0: जी देखिए, पहले तो सबसे बात यह है कि बाढ़ की पूर्व सूचना और सलाह के लिए रेडियो सुने जितनी बार हो सके। यदि आपको बाढ़ की चेतना मिल गई या आपको बाढ़ की आशंका हो तो बिजली के सभी उपकरणों के कनेक्शन अलग कर दें तथा सभी मूल्यवान और घरेलू सामान कपड़े आदि को पानी की पहुंच से दूर कर दें और बाढ़ग्रस्त इलाकों में अपनी मर्जी से कभी भी भटकते ना फिरें। इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है।
1: अब हम बात करेंगे भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड पर। भूस्खलन से क्या तात्पर्य है?
0: जी ये एक भूवैज्ञानिक घटना है। भूस्खलन के अंतर्गत पहाड़ी पत्थर चढ़ान, जमीन खिसकना, ढहना, गिरना, मिट्टी बहना जैसी घटनाएं होती है। यह छोटी से बड़ी मात्रा में हो सकता है और इसमें जनधन की हानि भी हो जाती है।
1: ये भूस्खलन क्यों होता है? जमीन का ढीलापन और नमी के कारण होता है या पृथ्वी की सतह अचानक हिलने के कारण आता है?
0: यह भारी बारिश, भूकंप, धरातलीय हलचल, मानवीय कार्यों जैसे पहाड़ों पर पेड़ों की कटाई, चट्टानों को काटकर सड़क या घर बनाने और पानी के पाइपों में रिसाव यानी लीकेज के होने से हो जाती है अक्सर।
1: तो इन सभी चीजों को रोकने पर ही भूस्खलन पर काबू और नियंत्रण पाया जा सकता है।
0: जी हाँ बिल्कुल। और हो सके तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं क्योंकि पेड़ लगाने से मिट्टी की ढीलापन में काबू पाया जा सकता है और मिट्टी बहने से भी रोका जा सकता है और पेड़ मिट्टी को बांधे रखते हैं।
1: यानी कि हमें पेड़ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: आप हमें बताएं कि भूस्खलन के समय बचने के लिए किस प्रकार कदम उठाएं?
0: जी भूस्खलन होने पर फौरन उस स्थान से निकल जाना चाहिए। अपने साथ में एक सेफ्टी किट रखनी चाहिए जिसमें जरूरी सामान जैसे फर्स्ट एड या पीने का पानी हो। अपने घर के आसपास की जगह की नियमित जांच करें। पेड़ चारों तरफ लगाएं। पेड़ पहाड़ों को बांधे रखता है और हो सके तो हेलीकॉप्टर या बचाव दल का फोन नंबर हमेशा अपने पास रखिए।
1: यानी कि फोन नंबर होने से हम कभी भी बचाव कार्य को तुरंत बचाव
0: जी,
1: के लिए बुला सकते हैं।
0: अगर आप किसी भी इमरजेंसी या किसी भी मुसीबत में हो तो आप इस नंबर के जरिए आप इस बचाव दल को अपने पास बुला सकते हैं।
1: आपने इस चर्चे में अपने कीमती वक्त योगदान दिए, इसके लिए ऑल इंडिया रेडियो चांदपुर की तरफ से आपका बहुत ही धन्यवाद।
0: जी बिल्कुल, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक अच्छा मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं तीन प्राकृतिक आपदाओं पर, जो है पहला भूकंप, दूसरी बाढ़ और तीसरे आखिरी है भूस्खलन पर। हमें आशा है कि आज के इस चर्चे के द्वारा सभी सुनने वालों को जरूर फायदा हुआ होगा। अगले भागों में हम फिर से चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर कई प्राकृतिक आपदाओं पर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सभी सुनने वालों को ऑल इंडिया रेडियो चांदपुर की ओर से शुभरात्रि। मैं हूँ पावन सिंह। इस कार्यक्रम का उत्पादक है श्री रायचंद्र चिंगथम। नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं हूँ पामोन सिंह। आज फिर से हम अपने कार्यक्रम में प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री थंगवेल गांगते। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में।
0: जी धन्यवाद।
1: आज हम अपने स्टूडियो में प्राकृतिक आपदाओं में से तीन आपदाओं पर चर्चा करना चाहेंगे, वह है

0: पहला चक्रवात, दूसरा है सूखा अकाल, तीसरी और आखिरी है बादल फटना। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तूफान पर। हमारे देश भारत में ज्यादातर चक्रवात किस राज्य में आता है, इसका शुरुआत कैसा होता है?
1: देखिए, हमारे देश में चक्रवात प्रायः बंगाल की खाड़ी में आता है। यह समुद्र की सतह पर निम्न वायु दाब के कारण उत्पन्न होते हैं। तेज हवाएं बारिश के साथ गोलाकार रूप में दौड़ती है और समुद्र तट पर जाकर भयंकर विनाश करती है। यह रफ्तार के अनुसार श्रेणी 1 से लेकर श्रेणी 5 तक होते हैं। इनकी गति लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो सकती है।
0: 280 किलोमीटर प्रति घंटा की गति में तूफान का आना बहुत ही तेज होता है। भारत में 1839 में कोरिंगा चक्रवात आया था, जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
1: और इसके पश्चात 1999 में उड़ीसा में 05B नाम का एक चक्रवात आया था, जिसमें करीबन 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे।
0: यानी कि अब तक के लिए इतिहास में ये दोनों चक्रवात यानी कि तूफान भारत के लिए सबसे विनाशकारी चक्रवातों में से माना जाता है।
1: जी बिल्कुल, ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा।
0: तूफान को तो रोका नहीं जा सकता, परंतु उससे अपने आप को बचाने और सुरक्षित करने के लिए कैसे कदम उठाएं?
1: जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पूर्व सूचना व सलाह के लिए हमेशा टीवी या रेडियो सुने। और चक्रवात कुछ ही घंटों में दिशा और गति तीव्रता बदल सकता है और माध्यम हो सकता है, इसलिए ताजा जानकारी के लिए रेडियो टीवी से निरंतर संपर्क रखें। इलाके को खाली करें या घर के भीतर रहें तथा अपने घर के सबसे मजबूत हिस्से में शरण लें। और यदि खुले में हो तो बचने के लिए ओट लें। तूफान के शांत होने पर बाहर या समुद्र के किनारे ना जाएं।
0: ये इसलिए है क्योंकि आमतौर से चक्रवात के साथ साथ समुद्र या झीलों में बड़ी बड़ी तूफानी लहरें उठती रहती। अब हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक आपदा या अकाल पर, जो कि किसानों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 6% लोग किसान है। खेतों के बीच में हम सब परे बड़े हुए हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल,
0: सदियों से किसान हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चली आ रही है। आज सूखे के कारण किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह आंसू दिख रही है। ये सूखापन कैसे आता है और क्यों, और इसके आने से क्या होता है, क्या क्या नुकसान होता है, हमें विस्तार से बताएं।
1: जी बिल्कुल, देखिए सूखे में किसी स्थान पर कई महीनों तक या सालों तक कोई वर्षा नहीं, जिसके कारण भूजल का स्तर गिर जाता है। इससे कृषि बुरी तरह प्रभावित होती है। सूखा के कारण इस स्थान पर किसी फसल की रेखा नहीं हो पाती है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला मौसमीय सूखा, दूसरा जलीय सूखा और तीसरा है कृषि संबंधी सूखा।
0: तो इस सूखे से बचने के लिए किसानों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार कदम उठाने चाहिए?
1: देखिए, सूखे के समस्या से निपटने के लिए वर्षा के जल का संरक्षण टैंकों और प्राकृतिक नलाशयों में करना जरूरी है।
0: क्या अशुद्ध जल को पूर्ण शुद्ध करके भी पानी को बचाया जा सकता है?
1: जी हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है बिल्कुल।
0: उन अशुद्ध जलों का प्रयोग घर की सफाई, बगीचे में पानी देना जैसे कार धोने में या वाहन सफाई आदि में भी किया जा सकता है। ऐसा करने से एक भी पानी का बूंद व्यर्थ नहीं जाएगा।
1: जी बिल्कुल, इसके विपरीत सूखे की समस्या से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए हमें। जिन क्षेत्रों में सूखे की समस्या रहती है वहाँ लोगों को सीमित मात्रा में पानी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी बचाया जा सके।
0: सूखे को लेकर हम इतना ही चर्चा करेंगे। आगे हम बात करेंगे प्राकृतिक आपदा बादल फटने पर। बादल फटना ये शब्द सुनते ही हमें याद दिलाता है 2013 में केदारनाथ पर हुई विनाशकारी का।
1: जी।
0: ये विनाशकारी उत्तराखंड राज्य में आया था 2013 में। बादल के फटने और तेज लगातार बारिश के कारण बाढ़ में उत्तराखंड को तहस नहस कर दिया। इस हादसे में 5,700 से भी अधिक लोगों की जान चली गई थी और 4,500 गांव नष्ट हुए थे।
1: और अचानक हुई इस प्राकृतिक आपदा में सभी को चौंका दिया। इसे मेघ विस्फोट भी कहते हैं। जब बादल अधिक मात्रा में पानी लेकर चलते हैं और उनके मार्ग में कोई बाधा अचानक से आ जाती है, बादल अचानक से फट जाता है,
0: तो इस स्थिति में उस स्थान पर करोड़ों मीटर पानी अचानक से गिर जाता है।
1: जी हाँ बिल्कुल, इनमें हवाएं तेजी से उठती है, बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ तीव्र वर्षा होती है, ओलापात भी हो सकता है और मूसलाधार के कारण गांव के गांव बह जाते हैं।
0: बादल फटने से हम अपने आप को किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं?
1: बादल फटने की घटना एक प्राकृतिक आपदा है जिसे हम मनुष्य अपने चाहने से या ना चाहने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। इस घटना को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे होने वाली जान माल की हानि को कम जरूर

0: कि इसका रोकथाम आकस्मिक बाढ़ और मलबा प्रवाह के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जनमानस या लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना बहुत जरूरी है।
1: यानी कि वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है, इस चर्चा के द्वारा हमने जाना। अब तक हमने कई प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, चक्रवात, बाढ़, बादल फटना, सूखा जैसे आपदाओं पर चर्चा किया। इस चर्चा द्वारा हम उम्मीद करते हैं कि सभी सुनने वालों को बहुत ही फायदेमंद जानकारी भी प्राप्त हुई होंगी। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने कीमती वक्त योगदान के लिए तथा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ऑल इंडिया रेडियो चुरचांदपुर की ओर से आपका धन्यवाद देते हैं।
0: यह मेरा सौभाग्य क्या है कि ऑल इंडिया रेडियो चुरचांदपुर ने मुझे निमंत्रित किया। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद।
2: अभी हम चुरचांदपुर जिले के एक छोटे से गांव में जाके हर साल तूफान और चक्रवात के समय काफी नुकसान होने वाले एक गांव में जाकर वहां के रहने वाले लोगों से बातचीत करके जानेंगे और कुछ जानकारियां भी प्राप्त करेंगे। आइए चलते हैं। आपका नाम?
3: बियानी।
2: आप इस गांव में कब से रह रहे हैं?
3: 10-12 साल।
2: इन 10-12 सालों में आपके गांव में सबसे कॉमन प्राकृतिक आपदाएं कौन सा है?
3: अगर प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर सबसे ज्यादा तूफान और चक्रवात आते
2: हैं। जैसे भूकंप वगैरह आते नहीं है?
3: आता है लेकिन थोड़ा कम आता है।
2: तो सबसे ज्यादा कॉमन तूफान और चक्रवात है ना। तूफान और चक्रवात किस समय ज्यादा आता है, बारिश के मौसम पे या कोई समय है?
3: ज्यादातर बारिश के समय में आ रहा है लेकिन बिना बारिश के मौसम में भी कभी कभी आ जाता है।
2: जब ये आता है तो हमेशा नुकसान लाता है या बिना नुकसान के भी कभी कभी आ जाता है?
3: जब तूफान या चक्रवात का पैमाना ज्यादा बड़ा होता है तो जन माल की हानि होती है लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ही कुछ प्रॉब्लम होता है।
2: तो जब नुकसान होता है तो किस प्रकार से नुकसान होता है? घर टूट जाते हैं या किसी की जान भी चले जाती?
3: घर तो टूटते भी है और जब बहुत बड़ा आता है तो कुछ जाने भी जाती है, जानवरों पर भी ज्यादा इफेक्ट होता है।
2: सबसे ज्यादा नुकसान कब आई थी?
3: सबसे ज्यादा नुकसान आज से 7 साल पहले तूफान आया था, उसमें ज्यादा देखने।
2: किसी की मौत हो गई थी या ऐसे सिर्फ घर घर टूट गए?
3: मौत का तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ काफी लोग जख्मी जरूर हुए।
2: लगभग कितने मकान टूटे होंगे?
3: लगभग आस पास 25-26 ऐसे कुछ मकान।
2: इसका क्या कारण? ये घर पक्के नहीं है, कच्चे घर है इसलिए या तूफान के ज्यादा तेज आने से?
3: दोनों का। तो ज्यादातर कच्चे मकान भी है और जो तूफान आता है उसकी तीव्रता काफी ज्यादा होती है तो उसके मुकाबले जो कच्चा मकान है वो सह नहीं पाता है।
2: आप तूफान के समय किस प्रकार अपने आप की बचाव करते हैं, कैसे?
3: हालांकि ये कई बार तूफान आ चुका है तो पहले से ही हम लोगों को बता देते हैं कि बारिश के मौसम में शायद तूफान आ सकता है, सुनते रेडियो सुनते तो हमें उसके बारे में समाचार मिल जाता है। उस पर हम लोगों को बता देते हैं कि ज्यादा दूर नहीं जाना है, किस किस काम से, और जो भी चीजें हम पहले से तैयारी करके रखनी है।
2: तो बहुत अच्छी बात। ऐसे समय में बचाव कार्यों के फोन नंबर आपके पास रहता है अचानक से इमरजेंसी के लिए, तो कैसे बचाव कार्य आप तक पहुँचते हैं?
3: हाँ, जैसे अभी हमने बात की थी पहले से कुछ तैयारी रह शुरू कर देते और उसमें भी हम इमरजेंसी कॉल नंबर पहले से लोगों को बता देते हैं। अगर ज्यादा बड़ा कोई तूफान है ज्यादा है तो फिर हम कॉल करके मदद के लिए बुला लेते हैं।
2: आपका गांव शहर से काफी दूर है तो बचाव कार्यों को आने में काफी समय लगता होगा?
3: हाँ, कभी कभी लग जाता है अगर तूफान ज्यादा हो लेकिन फिर भी मौसम का कुछ कह नहीं सकते तो मदद तेज अगर मिल ही जाती है।
2: आप हमें बताइए कि तूफान और चक्रवात के द्वारा जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई कैसे करते हैं और सरकार की तरफ से कोई मदद आती है, अगर आती है तो किस प्रकार की मदद आती है?
3: सरकार की तरफ से काफी मदद आती है, जो भी मकान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए वो काफी कैश देते हैं और जो भी जख्मी हुए उनके इलाज के लिए या किसी की जान चली गई हो तो उसके आगे के भविष्य के लिए कुछ योजना होती है जो वो लेकर आते हैं। ये कह सकते हैं कि हाँ सरकार मदद करती है।
2: तो आप सरकार की मदद या भूमिका से
3: सरकार की भूमिका काफी हद तक संतुष्ट है हम लोग, लेकिन और भी कुछ बड़े पैमाने में किया जाए तो जो अभी नुकसान होता है वो थोड़ा कम हो जाए।
2: आपने अपने वक्त दिए हमें इस बातचीत के लिए, उसके लिए हम ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करते हैं।
3: मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उसके जरिए मैं अपने विचार को प्रस्तुत कर।
1: अब हम इस जिले के ही एक छोटे से गांव मथल में जाके पूछताछ करेंगे कि यहाँ पर प्राकृतिक आपदा सबसे सामान्य कौन सा है। आपका नाम?
4: मेरा नाम है रिनोम।
1: कब से इस गांव में ले रहे हैं आप?
4: मुझे रहते हुए कम से कम 20 साल हो चुके हैं।
1: तो यहाँ पे सबसे कॉमन प्राकृतिक आपदाएं कौन सा है?
4: सबसे कॉमन जो प्राकृतिक आपदा है वो है बाढ़, और उसके साथ साथ भूकंप भी है, लेकिन भूकंप हर साल नहीं होता है जिस तरह बाढ़ हर साल बारिश के महीने पर होता है।
1: तो ये बाढ़ बारिश के मौसम में ही आते हैं या कभी भी आ जाता है?
4: हर साल

0: जब जोर से बारिश गिरता है तब ज्यादातर बाढ़ आने का
1: ज्यादा रहता
0: चांसेस
1: है।
0: बढ़ जाता है।
1: यानी कि बारिश के मौसम में ज्यादा आता है, लगातार बारिश होने पर ही।
0: हाँ, जिस तरह अगर देखा जाए 2018 में हमारे यहाँ पर बारिश के कारण काफी हमारे घर डूब गए थे।
1: लगातार वर्षा के कारण नदियां नाले में पानी भर जाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है?
0: इसका कारण मैं हमारे सरकार को ही नहीं दोषी देना चाहूंगा, इसका हम आम आदमी को भी दोष देना चाहूंगा, क्योंकि हम अपने जो कचरे हैं ये सब वहां पर फेंकते नहीं है, उसके बदले नालों पर आप फेंकने के कारण जब बारिश भरने से पूरा भर जाता है तो पानी
1: ब्लॉक हो
0: ब्लॉक
1: जाता
0: हो
1: है,
0: जाता है।
1: तो इससे सिर्फ ना केवल नदियां और नाला में ब्लॉक होता है, बल्कि दूषित यानी कि प्रदूषण वो भी फैल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही समझा।
1: हाँ, ये सच बात है और बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा करने से पानी का रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए पानी पूरे सड़क में बहने लगता है। इससे क्या परेशानी होती है जब सड़क पे आता है तो पानी?
0: रास्ते पर पानी जब बढ़ जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर काफी दिक्कत पड़ जाता है, और इसके कारण काफी बीमारियां जैसा डेंगू और जो अन्य जो बीमारी है वो काफी बढ़ जाता है इन सब चीजों के कारण।
1: अब तक जानलेवा और गंभीर नुकसान हुआ है क्या बाढ़ के आने से यहाँ पर?
0: काफी चीजें हुए हैं, पहाड़ ज्यादा बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी है कट जाते हैं, घर इतने मजबूत नहीं है, ज्यादा पानी बढ़ने से जो कमजोर घर है वो काफी उनको नुकसान पड़ जाता है इस बाढ़ की वजह से,
1: और जो नदी के पास रहते हैं उनको काफी नुकसान और
0: काफी मुश्किलों से उनको गुजरना पड़ता है।
1: आप बाढ़ और इसके स्थिति में बचने के लिए किस प्रकार से कदम उठाते हैं?
0: हमने काफी चीजें अभी तक उठाए हैं, अगले साल अगर ऐसा चीज को अगर हमें रोकना है तो हम सबसे पहले हमें सब कचरों की वजह से जो पानी बंद हो जाता है आगे नहीं जा पाता उसको हम सब अच्छे से जगह पर साफ कर देते हैं, और जहाँ पर इसको फेंकना होता है उधर हम सब गांव मिलके वो काम करते हैं, जो जरूरी चीजें हैं हमें उसे अपने जो घर के छतों पर रख देना चाहिए जिससे वो सब चीजें नष्ट ना हो।
1: अगर ऐसा भी नहीं कर पाए तो कोई सुरक्षित जगह पे सारे सामान को रख देना चाहिए भी। इसके साथ साथ अपने आप को भी सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए। ऐसे समय में बचाव कार्यों का फोन नंबर अपने पास होना भी बहुत जरूरी होता है।
0: आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि शहर से काफी दूर है जो हमारे गांव, इसलिए काफी लोगों के पास मोबाइल फोन ना होने के कारण हम
1: सही समय पर नहीं पहुंचता
0: हाँ
1: होगा ना
0: नहीं
1: मदद।
0: पहुंच पाता।
1: अब हमें बताएंगे कि बाढ़ से आए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद मिलता है?
0: हाँ, जिसके मकान कमजोर हो उनको फिर से बनाने के लिए और मजबूत तरीके से बनाने के लिए
1: जो
0: हमें
1: नष्ट हुआ हो मकान,
0: हाँ
1: उनका भी मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से मदद आता है।
0: आता है।
1: आप सरकार की भूमिका पर किस हद तक आप संतुष्ट हो?
0: हाँ, हमें कोई शिकायत नहीं है।
1: आपने हमसे बातचीत किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: हमें आशा है कि आज के इस चर्चा के द्वारा सुनने वालों को जरूर फायदा हुआ होगा। आप हमें इजाजत दीजिए। सभी सुनने वालों को ऑल इंडिया रेडियो चौचानपुर की ओर से शुभ रात्रि।
2: अपनों के पूर्वोत्तर वाणी प्रोग्राम एनईएस शिलोंग पर रिले कर दिया होने ले यू आकाशवाणी को हिमा एफएम ट्रागुपांत आज रात करने ये पर बन कर आको कलिपुर 6 बजे पर शुरू करी हम। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड नाइट।